0: माल किधर से आया?
1: पलट, तेरा ध्यान किधर है भाई? जी
0: तुम फिर इधर आ गया? बुलाओ पुलिस को।
1: पुलिस को नहीं, पंडित को, काजी को, पादरी को।
0: हा? क्या मतलब?
1: मतलब ये कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं।
0: तुम हमसे शादी बनाएगा?
1: बिल्कुल बनाना मांगता। लोग अपनी दुल्हन की सेज फूलों से सजाते हैं और हमने नोटों से सजा दी। अब भी यकीन नहीं आता?
0: आमीन। तुम हमको उल्लू तो नहीं बनाता?
1: अगर किसी को दुल्हन बनाना, उल्लू बनाना है तो ऐसा ही समझ लो।
0: यार मस्ती छोड़ो ना, तुम सच सच बताओ हमसे शादी क्यों करना मांगता है?
1: देखो, तू भी चोर, मैं भी चोर, दोनों मिलकर 12 बच्चे पैदा करेंगे।
0: 12?
1: हाँ, चीपर बाय द डजन। कोई गिराकट होगा, कोई चोर होगा, कोई उचक्का होगा, कोई डाकू होगा, और ये सब मिलकर हमको माला माल कर देंगे।
0: सच?
1: हाँ।

0: दिल चीर कर सामने रख देंगे।
1: पहले मुझे इस तक पहुंचना है।
0: और इस तक पहुंचने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा।
1: कहां?
0: मोहब्बत में सवाल नहीं किए जाते। आओ, कम इन।
1: किरण, तुमने तो वादा किया था कि तुम मुझे पीके तक ले जाओगी। ये तुम मुझे कहां?
0: मैंने कहा था ना, मोहब्बत में सवाल नहीं किए जाते।
1: ये
0: जवाब मिल गया।
1: किरण, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम नहीं जानती कि इस प्यार का अंजाम क्या होगा।
0: अंजाम?